0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई ट्रैक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736। सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
1: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहेका छौं। विगत 2 दशक देखि त्यसैले त हामी गर्व गर्छौं किनकि हामीले यहाँ को विश्वास जित्न सफल भएका छौं।
0: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि बाट आफ्नै कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँले चाहे बमजिम का चांदी का हरेक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
1: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सबै सामानहरु।
0: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाडि फोन नंबर 4227345423356।
2: इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निश्चितमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निःशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबार को जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निःशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
3: टुगेदर वी डेलिभर।

0: विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
1: अभी अपने सुनतानी नौवा लगन के आपन रेडियो स्टेशन एफ एम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: गोल्ड पैलेस सुखपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कंपनी
1: कंचनजंगा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभी आपने सुना था नौवा लगन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों के साथ मस्त रहता हूँ।
1: बहुत ज्यादा
0: वो याद नहीं कर रहा है, उसे तो घंटा

0: होम पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहने हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: Just grill yourself.
1: वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज का ये एपिसोड यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ा है। यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे, पासपोर्ट भी बनवा लिया था, लंदन जाने वाले थे, उसके बाद कैसे ये फिल्मों में आए और क्यों इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी, ये भी बड़ी अनोखी कहानी है जो आज आपके साथ बांटी जाएगी। और साथ ही यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े ही अनोखे किस्से भी आपके साथ बांटूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले चांदनी फिल्म का ये गाना मैं चाहता हूँ सुने सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

चोपड़ा के साथ हैं आप, और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से और इन्हीं की फिल्मों के कुछ बड़े ही जबरदस्त गाने आप सुन रहे हैं। तो जरा ये जाने की यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे और इसके बावजूद ये कैसे बने फिल्मों के जबरदस्त डायरेक्टर। देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश जो है घर में सबसे छोटा है, क्यों ना जबरदस्त डायरेक्टर। देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश इनके पासपोर्ट बनाने की तैयारियां चल रही है और ये बन गया जरा जलंधर में से जलंधर से इंजीनियर बनाया यश चोपड़ा। इनके लिए ही अपना नाम कमाने की तैयारियां शुरू हुई और नाम जलंधर में से जलंधर से यश जी ने देखा और भाई ये काम बड़ा पहले ही अपना नाम कमा चुके थे, बड़े डायरेक्टर बना दिए और अच्छी अच्छी काम कर रहे थे। तो यश जी ने देखा कि भाई ये काम मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेता, क्यों ना बड़े भाई यश जी ने कहा भाई ये तो इनके नहीं है, तुम जाओ कि भाई आप खान से बात करते हो, मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेता, तुम उनके असिस्टेंट बन जाओ भाई, ये तुम उनकी जाओ आईएएस जौहर साहब का नाम बताता हूं। पर आईएएस जौहर साहब के काम करने का असिस्टेंट बनना यश जी को पसंद है, आईएएस जौहर साहब का नाम लिया आप अपना, पर आईएएस जौहर साहब के काम करने का तरीका जरा यश जी को पसंद है। इंजीनियर तो उन्होंने अपने बड़े भाई साहब बी आर जौहर साहब का नाम लिया अपना ही असिस्टेंट, और मुझे अपने साथ काम सीखने ईश्वर ने चाहिए ये बात मन लगा काम करो, मन लगा और यश जी ने ये बने कहानी में जाए पहले।

विरासत पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से आप सुन रहे हैं और साथ ही यश जी की फिल्मों के बड़े ही जबरदस्त गाने। देखिए साहब, एक मकाम यश जी की जिंदगी में ऐसा आया कि इन्हें आनंद बख्शी साहब को इनकार करना पड़ा। बात दरअसल यूं रही कि बी आर चोपड़ा साहब रहे कि यश जी, इन दोनों ने ही सोच लिया था कि भाई साहिर लुधियानवी से बड़ा कोई गीतकार है नहीं, इनके ही लिखे गीत जो हैं इनकी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आनंद बख्शी साहब ने कहा कि भाई यश जी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी फिल्मों में गाने लिखूँ, पर यश चोपड़ा साहब ने मना कर दिया। कहता है कि देखिए ऐसा है कि मैं तो साहिर से ही गाने लिखवाता हूँ और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं आपके साथ भी काम करूँगा, लेकिन जब तक साहिर साहब हैं उन्हीं के साथ काम करूँ। और साहिर साहब की लिखी एक नज्म से इतने मुतासर हुए कि इन्होंने सोच लिया कि अब फिल्म बनाई जाएगी तो इस नज्म पर ही आधारित बनाई जाएगी। नज्म थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और बस साहब साहिर साहब की ही इस नज्म पे इन्होंने फिल्म बनाई। कभी कभी संगीत दिया खयाम साहब ने और आवाज़ दी मुकेश जी। देखिए साहब, उस जमाने में सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ये उसूलों के बड़े पक्के थे, ठान लिया कि साहिर के साथ काम करेंगे तो साहिर के साथ ही काम किया। अब साहिर की जादूगरी सुनते हैं इस फिल्म से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लम्हा ऐसा भी आया कि एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश चोपड़ा साहब ने जरा जबरदस्ती की और कहा कि भाई गाने तो लिखने पड़ेंगे, और बना दिया इन्हें एक महान गीतकार। कौन है वो गीतकार और कौन सा है वो गाना, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता

0: Radio Soul.
1: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें, पुराने गाने सुनते रहें।

और वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और देखिए साहब, यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां मैं आपके साथ बांट रहा हूं। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि एक बड़ा ही जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश जी के कहने पर वो गाने भी लिखने लगा। देखिए हुआ यूं, ये स्क्रिप्ट राइटर जो रहे ये जोड़ीदार थे, मतलब सलीम जावेद। सलीम खान साहब ने तो गाने नहीं लिखे, पर जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे। इन दोनों ने मिलकर एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी, लेकिन जब ये टूटे तो एंग्री यंग मैन को जरा रोमांटिक मैन भी बना दिया। हाँ, जावेद अख्तर साहब दरअसल सोचते थे कि भाई गाने नहीं लिखूंगा, ये शायरी जो है वो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई है, मैं इसे कैसे फिल्मों में ला सकता हूँ। पर यश जी ने कहा कि भाई जावेद साहब, आपको गाना तो लिखना पड़ेगा। गाना लिखा फिल्म सिलसिला के लिए। ये जावेद अख्तर साहब का लिखा पहला गाना था जो फिल्म में आया। ये बड़ा ही अनोखा गाना है, इसमें ख्वाब भी हैं और गुल भी हैं। आज समझ गए फिल्म सिलसिला के इस गाने के मुतालिक। जी हाँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जरा से सुनते हैं और उसके बाद बताऊंगा कि यश चोपड़ा साहब सुनील दत्त बन गए थे और महेंद्र कपूर किशोर कुमार। ये ऐसे क्या हालात थे कि यश जी को सुनील दत्त बनना पड़ा और महेंद्र कपूर साहब को किशोर कुमार। ये भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है, बहुत जल्द सुनाऊंगा सिर्फ वीकेंड क्लास।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

हमारी प्यारी प्राण बल्लभा, प्राण बल्लभा बरसाने में जय राधे राधे, जय राधे राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: शीर्ष समझदारी के सेतु FM अध्यात्म ज्योति
1: सिल्वर स्टेट सभी भन्दा पुरानो चांदी को एकमात्र शोरूम
2: सिल्वर स्टेट यहाँ को सेवा में निरंतर लगी रहे त हमी गर्व करी हमी यहाँ को विश्वास जितना सफल भैया
1: सिल्वर स्टेट अत्याधुनिक प्रविधि अपने कारखाना में निर्मित बिना रसायन का पूजा सामग्री विवाह लगायत अन्य शुभ कार्य का लागि चाहिने यहाँ ले चाहे बमजिम का चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री लगायत गिफ्ट आइटम का लागि
2: सिल्वर स्टेट एउटै छाना मुनि चांदी का सभी सामान
3: सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ शाखा शुक्रपथ विशाल बजार को अगाड़ी र जावलाखेल फोन 42 23 745 र 42 33 556
4: हर एक सियो धागो र टाक सँग जोडिएको हुन्छ एउटा कथा कथा परंपरा को कथा सीप र सुंदरता को पुस्तौं देखि बुनिएको पहिचान को रति पहिचान को आकार दिने कल्पना को
5: विगत 50 वर्ष देखि यही कल्पनालाई यथार्थमा परिणत गर्दै सर्वप्रिय लोकप्रिय सबैमा मनमा बस्न सफल श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर
4: श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर सिन

0: सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति
1: आदरणीय श्रोता, आज हामी पवित्र श्री पुरुषोत्तम मासको 14 दिनमा छौ। अब प्रस्तुत छ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गतको चतुर्दश अध्याय।